आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अवांजी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम। अवांजी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवांखे रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी। बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो व्हाइट एश ब्यूटी सोप। व्हाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
4: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हा, 3135525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: It's time to commercial break.
1: बेमिस जीबी टैप 60 दूसरे नेटवर्क मिनट्स और तो और 1000 जैज मिनट्स और एसएमएस सिर्फ 250 रुपए के लोड में।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

साईं मुंहिंजा माण्हू हरू भरू इंतिहा ते पहुची कंहिं न कंहिं खे इहो करे ॾेखारींदा आहिनि त मां तो लाइ मरां थो। मरण एतिरो आसान न आहे, भला जेकॾहिं मरजे त छो मरजे, हिक ॿिए लाइ जी बि त सघिजे थो। भला हिक ॿिए खे विसारे बि छो छॾियऊं, ख़ुशगवार वक़्त खे यादि करे ऐं मिठी निंड बि त करे सघिजे थी। दुख सुख ग़म ऐं ख़ुशी जा लम्हा यादि करे संभाले रखजनि। परे रहण सां जेको दिलि जो दर्द पैदा थिए थो उहो निभाईंदड़ थिए थो। अव्हां खे ज़रूर उहा ॼाण हूंदी त जेके पिरी प्यारा परे हूंदा आहिनि, छा उहे दिलि खां विसरी वेंदा आहिनि? हरगिज़ न। जेतिरो माण्हू परे हूंदो आहे ओतिरो ई दिलि जे वेझो हूंदो आहे, पर जुदाई जुदाई हूंदी आहे। साईं मुंहिंजा अव्हां खे ज़रूर कंहिं न कंहिं खे जुदाई ज़रूर यादि ईंदी हूंदी, जेका जीअरे ई ॼण मारे छॾींदी आहे।

जी साईं मुंहिंजा अमा लाइ असां गुजरात जेका चूंडी आहे उहा आहे त ॿ पखी पर हिकिड़ो चुगन धार ऐं धार ॿ पखी पर हिकिड़ो चुगन धार ऐं धार जेतनी जी पचार हले पई हज़ूर में। त साईं मुंहिंजा तव्हां असांखे इन गुजरात जो जवाबु असांखे फेसबुक जे आई डी ते ॿुधाए सघो था जंहिंखे सहूलियत आहे फेसबुक जी त आई डी आहे GFM88 ऐं जेकॾहिं तव्हांखे SMS जी सहूलियत आहे त इनबॉक्स में तव्हां SMS करे सघो था। असांजे SMS करण जो आसान तरीक़ो आहे मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदव उते LRK लिखी स्पेस ॾेई ऐं पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ जो नालो तव्हां असांखे गुजरात जवाबु 888 ते तव्हां असांखे सेंड करे सघो था। मोबाइल नंबर असांजो आन थींदो फिक्स 10 बजे तव्हां मोबाइल नंबर ते बि सवाल जो सही जवाबु ॿुधाए सघो था। असांजो नंबर आहे 0332-1322-88। त साईं मुंहिंजा असां वरी थोरी देरि में ई असां हलंदासीं कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ ऐं न्यूज़ ब्रेक जी तरफ़ वरी वापसि ईंदासीं कॾहिं बि न वञिजो।

जस्ट खाक तेहरान में रखियो पियो। माण्हुनि जो वॾो अंग पहुची वियो। तदफीन जे इजतम जी शुरूआत सुभाणे तेहरान में थींदी। सिक्योरिटी इंतज़ाम सख़्त। 6 जुलाई ते ताज़ियती इजतम जे मौके ते सॼे ईरान में आम मोकल हूंदी। 8 जुलाई ते योमी सोग जो ऐलान। तदफीन 9 जुलाई ते मस्जिद में कई वेंदी। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान का एनएफसी अवार्ड ते नज़रसानीअ जो मुतालबो करे छॾियो। सूबनि में वसीलनि जी विर्छ आबादी पदरां ज़रूरतनि ऐं आमदनी वारनि तहत रखण जी तजवीज़। बगानी हुकूमतनि खे बि वाज़े अख़्तियार ॾियण ऐं मुनासिब माली वसीला फराहम करण जो मशवरो। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में ॼाणायो वियो आहे त सूबनि खे वफ़ाक जी आमदनी मां 57% वसीला फराहम थी रही। 100% रुगो पघारनि ऐं पेंशन ते ख़र्च थियनि था, जंहिं सबबि गुरबत में घटिताई तोड़े आवाम खे सहूलतूं न मिली रहियूं आहिनि। 18 तरमीम बाद बि वफ़ाक समाजी ख़िदमत ऐं मुआशी सरगर्मी में मुलिस आहे, जंहिंसां वसीला ज़ाया थी रहिया आहिनि ऐं जवाबदाही जो निज़ाम बि मुतासिर थी रहियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी एफबीआर में मौजूद करप्ट आफिसरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जी हिदायत। स्मगलिंग रोकण ते फील्ड मार्शल ऐं कानून लागू करण इदारनि खे भेटा पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां एफबीआर जे सीनियर आफिसरनि जी मुलाक़ात। वज़ीर आज़म पारां एफबीआर गुज़िरियल माली साल दौरान 12.957 अरब रुपया टैक्स उगाइण ते सारा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त माली साल 2025 ऐं 2026 में टैक्स जो मुक़रर टारगेट हासिल करण वॾी कामयाबी आहे। उमीद आहे त एफबीआर हलंदड़ माली साल दौरान 15 अरब रुपियनि जो टारगेट हासिल कंदी। एफबीआर में करप्ट नाअहल ऐं कोताही कंदड़ आफिसरनि ऐं अमले खे बर्दाश्त न कयो वेंदो। अमरीका ऐं विच ओभर वारनि मुल्कनि जो अपना हुरमज़ मां कारोबारी सरगर्मियूं बिना रंडक जारी रखण लाइ गॾियल कोशिशुनि करण ते तफ़ाक़। अमरीकी सेंट्रल कमांड जी क़यादत में बहरीन में 12 मुल्कनि जी फ़ौजी सरबराहनि जो इजलास। अमरीका, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, मिस्र, उर्दन, कुवैत, लबनान, शाम, यूएई ऐं यमन जे आला फ़ौजी अमलदारनि जी शिरकत। अमरीकी फ़ौज जे सरबराह एडमिरल ब्रेड कोपर चयो आहे त अमरीका इलाक़ाई सलामती ऐं इस्तक़ाम लाइ इतिहादनि सां गॾु बीठल आहे।

0: बबरलो में अगवाचल बारन जी बाजियाबी लाए वापस से अठे दिया बा एहतजाज जारी प्रिया एक्शन कमेटी या गुमचल बारन जे वारसन पारा कायम चल एहतजाजी कैंप ते सियासी समाजी धुरन जी आमद जारी मुजाहिरन पारा प्रिया कुमारी समेत अगवाचल सब बार बाजियाब कराने जो मुतालबो सिंध के मुख्तलिफ इलाकन में रोड हादसा टे जणा फौत सुल्तानकोट में बोतलन से भरियल मज़दा ब्रेक फेल थियण सबब खानगी क्लिनिक से टकराए जी वही बजणा फौत फौतन में ठुलवासी असद बिरोही नासिर बिरोही शामिल नवाबशाह सकरण रोड से आयल टेंकर मोटरसाइकिल में टक्कर नौजवान फरहान मंगसी दम ॾेई छॾियो सकरबर से खुलियल फाटक पर ट्रेन कार मथा चढ़ी वही रिटायर्ड डीएसपी भाव समेत फोत बजना जख्मी न्यू सकर सोसायटी पर खुलियल होने सबब हादसो पेश आयो रिटायर्ड डीएसपी दरिया खान जतोई सरस भाव आरब जतोई थरे से फोत थी लधु ए जुनेद जतोई सख्त जख्मी थी पाया रूस ने यूक्रेन के गादी वाले शहर की उदे मिजाइल एंड ड्रोन हमला वी नवे जख्मी इमारतू तबाह की जो मेयर बढ़ाए रो है यूक्रेन के फौजी मागन के निशानो बढ़ाए पो पाकिस्तान भारत जंग में 11 जहाज किराया व्या अमरीकी सदर ट्रंप नई दावा सामू कर अची वही है मीडिया से गाल बोल दौरान चवणो तो बिन एटवी मुल्क में जंग रोकी 3 करोड़ इंसानी जानू बचाय इसराइल में मुझे मकबूलियत 99% हुई समझ का बाहर आए तो कोई यहूदी डेमोक्रेट के वोट किए तो दई सके अमरीकी सदर ट्रंप एक भेरों बीहर नेटो से तनकीद कन्दे है तो अमरीका नेटो से 999 अरब डॉलर खर्च करे तो बरतानिया 90 अरब डॉलर फ्रांस 66 अरब डॉलर इटली 48 अरब डॉलर पोलैंड 44 अरब डॉलर नेटो से जर्मनी समेत बया मुल्क घट खर्च कन था जो खिल जोगो है अमरीकी सब का खर्च कर रो है
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
2: सुनते रहो GAFM 90.4
4: छा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
5: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
4: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 0331252578 6
5: जी हाँ 3135525786
4: GAFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

तव्हांखे गुजरात नोट कराई आहे त तव्हां गुजरात असांजी आहे त ॿ पखी पर हिकिड़ो चुगन धारऊं धार जेतनी जी पचार हले पई हज़ूर में त साईं मुंहिंजा तव्हां असांखे इन गुजरात जवाब असांखे फेसबुक जे आई डी ते पंहिंजो मोकिले सघो था असांजी आई डी आहे जी एफ एम 88 ऐं मोबाइल नंबर आहे 0333-21-3228 ते तव्हां असांजे पंहिंजे सवाल जो सही जवाब मोकिले सघो था ऐं एस एम एस ज़रिए बि तव्हां पंहिंजो सवाल जवाब मोकिले सघो था असांजे एस एम एस करण जो आसान तरीक़ो आहे इनबॉक्स में तव्हां वेंदव उते मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वञी उते तव्हां एल आर के लिखी स्पेस ॾेई पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ जो नालो ऐं गुजरात जो सही जवाबु लिखी करे तव्हां असांजे 888-1 ते सेंड करे सघो था त साईं मुंहिंजा ॻाल्हि कंदासीं वरी सां हिन वक़्ति कावड़ जी त कावड़ जो अचणु हिकिड़ो जेको फितरी अमल आहे कावड़ किथे ऐं कॾहिं बि अची सघे थी पर अॼुकल्ह असां कावड़ खे पंहिंजो पाण ते हावी करे छॾियो आहे ऐं कावड़ खे पाण कोल्हे ते खयूं वतूं था घुमंदा असां त कावड़ जा एतिरा ग़ुलाम थी विया आहियूं जो मिटनि माइटनि तां कावड़ लही कोन थी ऐं हज़ारे ऐब उन्हनि में पिया नज़र ईंदा एतिरे क़दुरु जो कावड़ दौरान कावड़ जो अहसास बि असां खां मोकिलायो वियो आहे ऐं साईं जा असां एतिरा त कावड़ में भरिजी वेंदा आहियूं जो नंढनि ॿारनि जे विढ़ण तां बि हथियार खणी हिक ॿिए जूं जानियूं पिया ज़ाया कंदा आहियूं जेको अमल तमामु सरासर ग़लति आहे असांखे पाण सुठो साबित करण लाइ दरगुज़र इन मसइले खे करणु घुर्जे ऐं सब्र जो मुज़ाहिरो करणु घुर्जे कावड़ खे छॾे असांखे ख़ुश मिज़ाज बणिजी हिक ॿिए सां हमदर्दियूं करणियूं पवंदियूं ऐं कावड़ खे छॾे असांखे ख़ुश मिज़ाज बणिजी हिक ॿिए सां हमदर्दियूं करणियूं पवंदियूं ऐं मोहबतियूं वधाइणियूं पवंदियूं जिते मोहबतियूं

साईं जा प्रोग्राम रोशन सुबह में असां जेका गुजारत ॾिनी आहे असां तव्हांखे बार बार गुजारत ॿुधायूं पिया ऐं गुजारत तमामु आसान आहे या ॾुखी आहे तव्हां पाण कंहिंखां बि मालूमात वठी सघो था कंहिंखां बि पुछी सघो था त असांजी जेका गुजारत आहे ॿ पखी पर हिकिड़ो चुगन धारऊं धार ॿ पखी पर हिकिड़ो चुगन बि धारऊं धार जी तनी जी पचार हले पई हज़ूर में साईं जा अॼु असां ॻाल्हि कंदासीं उहो कामरेड कामरेड हैदर बख़्श जतोई जंहिंजो किताबनि में सबक पाण पढ़ियोसीं प्राइमरी में पहिरें दर्जे खां पंजे दर्जे ताईं काफ़ी सबक आहिनि सिंधी जा पर हैदर बख़्श जतोई हिकिड़ो वॾो नालो आहे हैदर बख़्श जतोई जेको हारियुनि जो हॾु ॾोखी ऐं उन्हनि जे दर्द खे पंहिंजो दर्द समुझंदड़ हारी ऐं जिदोजहद जो वॾो नाम जंहिंजी सोच जंहिंजो फिक्र अॼु बि हिकु राय मशल आहे ऐं कामरेड हैदर बख़्श जतोई उहो हिकिड़ो अरड़ो इंसान हुयो जंहिं पंहिंजी ज़िंदगी पंहिंजे मज़दूरनि ऐं हारनि लाइ वक़्फ़ कई हैदर बख़्श जहिड़ा किरदार अमर रहंदा ऐं उहे किरदार कॾहिं बि मरणा न आहिनि अहिड़नि किरदारनि जी तारीख़ ठही चुकी आहे ऐं ज़िंदगी में केतिरियूं ई तब्दीलियूं अची चुकियूं आहिनि तॾहिं बि हिन नंढड़े ज़िन नंढड़े दिलि अव्हां खे विसरण में तब्दीली नाहे आंदी ऐं ज़हन उन ॻाल्हि खे तस्लीम कनि था त तव्हां असां खां विछड़िया आहियो पर अव्हां असां खां विसरियल आहियो ऐं अव्हां पंहिंजूं ज़मीनूं हारनि में विरहाईंदड़ अहम किरदार आहियो अॼु असांजे विच में त तव्हां न आहियो पर अव्हां खे असां यादि कयूं पिया ऐं अॼु बि असांजी आदत साॻी आहे त तव्हां असांजे विच में आहियो असांजो हैदर बख़्श जतोई कामरेड ॻोठ बखोदेरो ऐं तालको बाकराणी ज़िलो लाड़काणे जो मशहूर शख़्सियत जंहिंजो किताबनि में सबक़ हूंदो पर मुंहिंजे हिकड़ी ॻाल्हि ज़हन में अची वई ऐं मुंहिंजी ॻाल्हि साम्हूं अची वई त चयुमि त छो न भला अॼु उन शख़्सियत खे यादि कयूं ऐं हिकड़ो नगमो आहे अव्हां ताईं पहुचायूं पिया

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिससे मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: कारोबार की तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
3: आई। हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हाँ 2315525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: धादु जे इलाइक़े रुकण भरिसां ॻोठ जबीर जे हथियारबंदनि जी फायरिंग, हिकु जहिड़ो क़तल, मक़तूल याकूब पुट यूसुफ चांडियो जी लाश इस्पताल मुंतकिल वारसन मूजिब अली मोहम्मद ऐं बचल चांडियो फायरिंग करे नौजवान खे क़तल कयो आहे। जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ कयो वञे।
1: ऐं मिया साहब, असां नेशनल हाईवे ते ट्रक खानगी अस्पताल सां टकराइजी वई, ॿ ॼणा फोत। सखर खां कोयटा वेंदड़ ट्रक ड्राइवर जे कंट्रोल मां निकिरी अस्पताल सां टकराइजी वई। हादसे में ट्रक ड्राइवर अस्तुल्लापुर मोहम्मद यूसुफ गिरोही नासिरपुर रोहिल गिरोही फोत थी विया।
2: सोलर ऐं बैटरी ते
3: डायरेक्ट आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
4: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM
1: 90.4
2: पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
3: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
2: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252576
3: जी हाँ बुड़ी 331 5 5 786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: White Age Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
5: आई। हाँ, गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हाँ, 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: बलोचिस्तान के शहर कोयटा का पिशावर वेंदड़ मुसाफिर बस हादसे जो शिकार, 40 मुसाफिर फौत, 8 जख्मी, पोतिन के अंग में वाध जो खदशो। कोयटा का पिशावर वेंदड़ बस बलोचिस्तान ए केपी के सरहदी इलाके दानासरा में हादसे जो शिकार थी। पोतिन जा लाश ए जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मकामी इंतजामिया मूजिब मुसाफिर बस खाई में किरण सबब जानी नुकसान थो है। पोतिन जा बढ़ ए जख्मी के मकामी अस्पताल ना मुंतकिल कर।
2: ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी रस्म की अज का शुरुआत। आयतुल्लाह खामनाई समेत संदस खानदान जा मड़ तेहरान की मस्जिद में रखा वया। आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी रस्म में शिरकत लाए परदेही मेहमान की तेहरान आमद जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ए पीपी चेयरमैन बिलावल जरदारी भी आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी रस्म में शरीक थी। ईरानी फौज है तो अमेरिका या इसराइल शहीद आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी रस्म दौरान हमलों कर तो जवाब तकड़ो ए सख्त होंद।
1: ईरान तकरीबन असाजा सब शर्त मंझन के लिए राजी थी वो है। ईरान जो नव रडार सिस्टम भी तबाह कर छो। हाँ ईरान वट को भी रडार सिस्टम ना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो पाकिस्तान ए भारत में जंग रोके 3 करोड़ इंसान जानू बचायू। इसराइल में भी सब का मां मकबूल आया।
2: वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी की जिदा में मके की वक्ती गवर्नर से मुलाकात। मोहसिन नकवी ए शहजादे सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात कई। मुलाकात दौरान जिदा जो गवर्नर ए बया शाही खानदान जा फर्द भी मौजूद हुआ। घरू वजीर पाक सऊदी लागापन के वधिक मजबूत बनाने वारो अजम वरजायो। हज जा बेहतरीन इंतजाम करण ते थोरा मनिया।
1: सीनियर सूबे वजीर शर्जील इनाम अहमद से वफाकी वजीर राणा मोहम्मद कासिम नून की मुलाकात। आजाद कश्मीर की सूरतहाल ए कौमी यकजहती बाबत ख्याल की देवट। वायरल कश्मीर में इंसानी हक की भनकर की मजम्मत। पार्लियामेंट कमेटी ए सिंध हुकूमत विच में सहकार के मजबूत बनाने से तफाक। शर्जील इनाम अहमद चाहे तो कश्मीर जड़े कौमी मुफाद से वफाकी सूबा इदारों में राबता ए हम आहंगी अणटर है। कश्मीर मसलो पाकिस्तान की परदेही पॉलिसी जो अहम हिस्सो है।
2: कराची में बाहे सबब सड़ी रख थियल गुल प्लाजा के पुलिस चालान ते प्रोसिक्यूशन जा एतराज बरकरार। चालान अण पूरो करार डींदे केतरे ही खामियों की निशानदेही करे छड़ी। अदालती जांच के चालान जो हिस्सो न बनाए ते भी एतराज कयो वयो। जरियन जो चवण आए ते प्रोसिक्यूशन एमरजेंसी गेट बंद होजण बावजूद जांच नाहे कई। एक दुकान की जगह ते दुकान ठाण वारो मामलो भी नजरअंदाज कयो वयो आहे। प्रोसिक्यूशन के एतराजन ते डीआईजी दखण इजलास सडाए वरतो।
1: दादू के इलाके रुकण भरसा गोठ जबीरजी में हथियारबंद की फायरिंग। एक जणो कतल मतूल याकूब पुट यूसुफ चांडियो जो लाश अस्पताल मुंतकिल। वारसन मूजिब अली मोहम्मद ए बचल चांडियो फायरिंग करे नौजवान के कतल कयो आहे। जवाबदारन के गिरफ्तार करी इंसाफ कयो वञे।
2: मंजूराबाद वेझो मांझान में बदमनी ए मंशा के विकरे खिलाफ एसयूपी के रैली ए धरणो। एसयूपी कारकुनन शाही बाजार खां रैली कडी मेन चौक ते धरणो हयो। मुजाहरीन चयो तो पुलिस की नाहेली सबब मांझान तालके में मंशा जो आज़ार वधी वयो आहे। नौजवान नस्ल तबाह थी रहयो आहे। पुलिस मंशा फरोशन सां विट बणियल आहे।
1: सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कौमी अवामी तहरीक जा पानी की खोट ए सिंध के बेन मसलन खिलाफ मार्च ए धरना। दादू में कौमी अवामी तहरीक पारा मार्च कर धरणो वो। कंबर में भी कौमी अवामी तहरीक सिंध के बरंदड़ मसलन खिलाफ एहतजाज कर। अगवान जो सिंध खिलाफ का भी साजिश कबूल न करण जो ऐलान।
2: हादसे में ट्रक ड्राइवर असदुल्ला पुट मोहम्मद यूसुफ गिरोही और नासिर पुट रोहिल गिरोही फोत थिया।
3: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज, सिंध की आवाज।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
4: सुनते रहो GAFM 90.4।
6: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
7: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
7: गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
6: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
6: 0331252578 6।
7: जी हाँ, 2315525786
6: GAFM रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252576।
3: जी हाँ बुड़ी 331 5 5 786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: हादसे जो शिकार, फौत 8 जख़्मी, फौतियुनि जे अंग में वाधि जो ख़दशो। कोयटा खां पिशावर वेंदड़ बस बलोचिस्तान ऐं केपी जे सरहदी इलाइक़े दानासरा में हादसे जो शिकार थी, फौतियुनि जा लाश ऐं ज़ख़्मी इस्पताल मुंतक़िल। मक़ाम इंतज़ामिया मूजिबि मुसाफ़िर बस खाईअ में किरण सबबि वधीक जानी नुक़सान थियो आहे। फौतियुनि जा मड़ ऐं ज़ख़्मियुनि खे मक़ामी इस्पतालनि ॾांहुं मुंतक़िल कयो वियो आहे।
1: ईरान जे शहीद सुप्रीम आयतुल्लाह लीडर खामनाई जी आख़िरी रस्मनि जी अॼु खां शुरूआत। आयतुल्लाह खामना समेत संदसि ख़ानदान जा मड़ तेहरान जी मस्जिद में रखिया विया। आयतुल्लाह खामनाई जी जे आख़िरी रस्मनि में शिरकत लाइ परॾेही महिमाननि जी तेहरान आमद जारी। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं बीबी चेयरमैन बिलावल ज़रदारी बि आयतुल्लाह खामनाई जी जे आख़िरी रस्मनि में शरीक थींदो। ईरानी फ़ौज चयो आहे त अमेरिका या इसराइल शहीद आयतुल्लाह खामनाई जी जे आख़िरी रस्मनि दौरान हमिलो कयो त जवाब तकड़ो ऐं सख़्त हूंदो।
0: ईरान तकरीबन असांजा सभु शर्त मञण जे लाइ राज़ी थी वियो आहे। ईरान जो नओं रडार सिस्टम बि तबाह करे छॾियो। हाणे ईरान वटि को बि रडार सिस्टम नाहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त पाकिस्तान ऐं भारत में जंग रोके 3 करोड़ इंसाननि जूं जानियूं बचायूं। इसराइल में बि सभ खां वधीक मां मक़बूल आहियां।
1: मोहसिन नकवी जी जिदा में मके जी वक़्ती गवर्नर सां मुलाकात। मोहसिन नकवी ऐं शहज़ादे सऊद बिन मशल अब्दुल अज़ीज़ सां मुलाकात कई। मुलाकात दौरान जिदा जो गवर्नर ऐं ॿिया शाही ख़ानदान जा फर्द बि मौजूद हुया। घरू वज़ीर पाक सऊदी लाॻापन खे वधीक मज़बूत बणाइण वारो अज़म वरजायो। हज जा बहितरीन इंतज़ाम करण ते थोरा मञिया।
0: सीनियर सूबाई वज़ीर शहजीर इनाम अहमद सां वफ़ाक़ी वज़ीर राणा मोहम्मद क़ासिम नून जी मुलाक़ात। आज़ाद कश्मीर जी सूरतहाल ऐं क़ौमी यकजहती बाबति ख़्यालनि जी ॾे वठि। वाधारियल कश्मीर में इंसानी हक़नि जी भञक जी मज़हबत। पार्लियामेंटी कमेटी ऐं सिंधु हुकूमत विच में सहकार खे वधीक मज़बूत बणाइण ते इतफ़ाक़। शहजीर इनाम अहमद चयो त कश्मीर जहिड़े क़ौमी मुफ़ाद ते वफ़ाक़ी ऐं सूबाई इदारनि में राब्ता ऐं हमाहंगी अणतर आहे। कश्मीर मसइलो पाकिस्तान जी परॾेही पॉलिसीअ जो अहम हिसो आहे।
1: लाहौर में परडे॒ही औरतुनि खे अगवाबाद ज़्यादती करण वारे केस में गिरफ़्तार नायब वज़ीर आज़म एसाक डार जे ॾोहिटे मोहम्मद रज़ा डार समेत 4 जणा अदालत में पेश। पुलिस रज़ा डार, हसन रज़ा, सिकंदर ख़ान, साजिद अली खे अदालत में पेश कयो। जांच आफ़िसर पारां अदालत खे जवाबदारनि जो 14 ॾींहनि जो जिस्मानी रिमांड ॾियण जी इस्तदा। अदालत रज़ा डार समेत चइनी जवाबदारनि खे 4 ॾींहनि जी जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले करे छॾियो। 28 जुलाई ते पेश करण जो हुकुम। औरत ख़िलाफ़ आज़ा अगवा ऐं ज़्यादती जो केस दाख़िल करायो आहे। पुलिस गुज़िरियल ॾींहुं मुबैना तौर अगवा थियल ॿिन्ही औरतनि खे बाज़ियाब करायो हो।
0: कराची में बाहि सबब सड़ी रख थियल गुल प्लाज़ा जे पुलिस चालान ते प्रोसिक्यूशन जा एतिराज़ बरक़रार। चालान अणपूरो करार ॾींदे केतिरनि ई खामियुनि जी निशानदेही करे छॾी। अदालती जांच खे चालान जो हिसो न बणाइण ते बि एतराज़ कयो वियो। ज़रियनि जो चवण आहे त प्रोसिक्यूशन एमरजेंसी गेट्स बंदि हुजण बाबति जांच नाहे कई। हिक दुकान जी जॻह ते ॿ दुकान ठाहिण वारो मामिलो बि नज़रअंदाज़ कयो वियो आहे। प्रोसिक्यूशन जे एतराज़नि ते DIG ॾखण इजलास सॾाए वरितो।
1: दादू जे इलाइक़े रुकण भरसां ॻोठ जबीर जे हथियारबंदनि जी फायरिंग। हिकु ॼणो क़तल, माकूल याकूब पुट यूसुफ चांडियो जो लाश इस्पताल मुंतक़िल। वारसनि मौजूब अली मोहम्मद ऐं बचल चांडियो फायरिंग करे नौजवान खे क़तल कयो आहे। जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे इंसाफ कयो वञे।
0: मंज़ूराबाद वेझो मांझंदि में बदमनी ऐं मंशियात जे विकिरे ख़िलाफ़ SUP जी रैली ऐं धरणो। SUP कारकुननि शाही बाज़ार खां रैली कढी मेन चौक ते धरणो हुयो। मुजाहिरनि चयो त पुलिस जी नाअहलीअ सबबि मांझंदि तालुके में मंशियात जो आज़ार वधी वियो आहे। नौजवान नसुल तबाह थी रहियो आहे। पुलिस मंशियात फरोशनि सां बिट बणियल आहे।
1: सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि क़ौमी अवामी तहरीक जा पाणी खोट ऐं सिंध जे ॿियनि मसलनि ख़िलाफ़ मार्च ऐं धरणादू में क़ौमी अवामी तहरीक पारां मार्च करे धरणो हयो वियो। कंबर में बि क़ौमी अवामी तहरीक सिंध जे ॿरंदड़ मसलनि

0: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: मेरा
1: फैन। White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत डी जी खुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।
2: आशना अपनी हकीकत से हो ऐ दहकान जरा, दाना तू खेती भी तू बारां भी तू हासिल भी तू। आह किसकी जुस्तुजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रहरो भी तू रहबर भी तू मंजिल भी तू।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: ईरान तकरीबन असांजा सभु शर्त मञण जे लाइ राज़ी थी वियो आहे। ईरान जो नओं रडार सिस्टम बि तबाह करे छॾियो। हाणे ईरान वटि को बि रडार सिस्टम न आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त पाकिस्तान ऐं भारत में जंगी रोक के 3 करोड़ इंसाननि जूं जानियूं बचायूं। इसराइल में बि सभ खां वधीक मां मक़बूल आहियां।
1: इसराइल अमेरिका ईरान ॻाल्हियुनि दौरान ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराकी ऐं स्पीकर मोहम्मद बाकिर खे क़तल करण जो मनसूबो जोड़ियो हो। अमेरिकी मीडिया जे रिपोर्ट वाशिंगटन पोस्ट ऐं न्यूयॉर्क टाइम्स पंहिंजे रिपोर्ट्स में ॼाणायो आहे त अमेरिका पारां इसराइली मनसूबे बाबति विच ओभर जे मुल्कनि खे आगाह कंदे अब्बास ऐं इराकी ऐं बाकिर खे महतात रहण बाबति चयो हो। इसराइली रथाबंदी जो मक़सदु अमेरिका ऐं ईरान विच में जंग बंदी ॻाल्हियुनि खे रोकण हो।
0: वज़ीर आज़म गैर मयारी सिरिंजिस जे इस्तेमाल ऐं तयारीअ ते पाबंदी लॻाइण जी हिदायत करे छॾी। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जी सदारत हेठि मुख़्तलिफ़ मर्ज़न जी रोकथाम बाबति इजलास, एड्स ऐं हेपेटाइटिस समेत ॿियनि बीमारियुनि जी रोकथाम जे लाइ खयल क़दमनि जो जाइज़ो वरितो वियो। शहबाज़ शरीफ चयो त गैर मयारी सिरिंजिस जे इस्तेमाल ऐं तयारीअ ते पाबंदी लॻाई वञे। क़ौमी सतह जी गॾियल हिकमत अमली असराइते तौर लागू थियण सां ई मसइलो हल थींदो। आलमी भाईवारनि जी मदद इंतिहाई ज़रूरी आहे।
1: बलूचिस्तान जे शहर कोयटा खां पिशावर वेंदड़ मुसाफ़िर बस हादसे जो शिकार, 40 मुसाफ़िर फोत, 8 ज़ख़्मी, फोतियुनि जे अंग में वात जो खसियो। कोयटा खां पिशावर वेंदड़ बस बलूचिस्तान ऐं केपीके जे सरहदी इलाइक़े दानासरा में हादसे जो शिकार थी वई। फोतियुनि जा लाश ऐं ज़ख़्मी इस्पताल मुंतकिल। मक़ामी इंतिज़ामिया मूजिब मुसाफ़िर बस खाई में किरण सबबि वधीक जानी नुक़सान थियो आहे। फोतियुनि जा मड़ ऐं ज़ख़्मियुनि खे मक़ामी इस्पतालनि ॾांहुं मुंतकिल कयो वियो आहे।
0: हुकूमत वापारी बिरादरी जा मसइला हल करण जे लाइ संजीदा आहे। वापारियुनि जा मसइला हल करण जे लाइ कम करे रहिया आहियूं। नाणे वारे वफ़ाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त टैक्स जी उगाड़ी जे लाइ वापारी ऐं चैम्बर्स FBR जो साथ ॾियनि। ईरान जंग सबबि व्याज जी शरह में मामूली वाधि थी, महांगाई ते ज़ाब्तो आणण जी कोशिश कयूं पिया।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे जी बदीन FM 90.4 न्यूज़ मां पेश कई पई वने।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में पोर्स के करे खत्म ए डीए कुदरती क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय दान।
2: जुमतुल मुबारकत डीए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली 90.4 जे पेश कई पयो।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की
1: जुमजे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जी 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज, सिंध की आवाज।
2: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: FM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन। White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: ईरान तकरीबन असांजा सभु शर्त मञण जे लाइ राज़ी थी वियो आहे। ईरान जो नओं रडार सिस्टम बि तबाह करे छॾियो। हाणे ईरान वटि को बि रडार सिस्टम नाहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त पाकिस्तान ऐं भारत में जंग रोके 3 करोड़ इंसाननि जूं हयातियूं बचायूं। इसराइल में बि सभ खां वधीक मां मक़बूल आहियां। इसराइल अमेरिका ईरान ॻाल्हियुनि दौरान ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास इराग़ची ऐं स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़ खे क़त्ल करण जो मनसूबो जोड़ियो हो। अमेरिकी मीडिया जी रिपोर्ट वॉशिंगटन पोस्ट ऐं न्यूयॉर्क टाइम्स पंहिंजी रिपोर्ट्स में ॼाणायो आहे त अमेरिका पारां इसराइली मनसूबे बाबति विच उभर जे मुल्कनि खे आगाह कंदे अब्बास इराग़ची ऐं बाक़िर क़ालिबाफ़ खे बि मोहतात रहण बाबति चयो। इसराइली रिथाबंदीअ जो मक़सद अमेरिका ऐं ईरान विच में जंगबंदी ॻाल्हियुनि खे रोकणु हो। वज़ीर आज़म गैर मयारी सिरिंज जे इस्तेमाल ऐं तयारी ते पाबंदी लॻाइण जी हिदायत करे छॾी। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जी सदारत हेठि मुख़्तलिफ़ मर्ज़नि जी रोकथाम बाबति इजलास, एड्स ऐं हेपेटाइटिस समेत ॿियनि बीमारियुनि जी रोकथाम जे लाइ खयल क़दमनि जो जाइज़ो वरितो वियो। शहबाज़ शरीफ़ चयो त गैर मयारी सिरिंज जे इस्तेमाल ऐं तयारी ते पाबंदी लॻाई वञे, क़ौमी सतह जी गॾियल हिकमत मिली असराइते तौर लागू थियण सां ई मसइलो हल थींदो। आलमी भाईवारनि जी मदद इंतिहाई ज़रूरी आहे। बलोचिस्तान जे शहर कोयटा खां पिशावर वेंदड़ मुसाफ़िर बस हादसे जो शिकार, 40 मुसाफ़िर फौत, 8 ज़ख़्मी, फौतनि जे अघ में वाध जो ख़दशो। कोयटा खां पिशावर वेंदड़ बस बलोचिस्तान ऐं केपी जे सरहदी इलाइक़े दानासरा में हादसे जो शिकार थी। फौतनि जा लाश ऐं ज़ख़्मी इस्पताल मुंतक़िल। मकामी इंतज़ामिया मूजिब मुसाफ़िर बस खाईअ में किरण सबबि वधीक जानी नुक़सान थियो आहे। फौतनि जा मरह ऐं ज़ख़्मियुनि खे मकामी इस्पतालनि ॾांहुं मुंतक़िल कयो वियो आहे। हुकूमत वापारी बिरादरी जा मसाला हल करण जे लाइ संजीदा आहे। वापारियुनि जा मसाला हल करण जे लाइ कम करे रहिया आहियूं। नाणे वारे वफ़ाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त टैक्स जी उगाड़ीअ जे लाइ वापारी ऐं चैम्बर्स FBR जो साथ ॾियनि। ईरान जंग सबबि ब्याज जी शरह में मामूली वाध थी, महांगाई ते ज़ाब्तो आणण जी कोशिश कयूं पिया। वफ़ाकी घर वज़ीर मोहसिन नक़वी जी जिदा में मके जे वक़्ती गवर्नर सां मुलाक़ात। मोहसिन नक़वी ऐं शहज़ादे सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अज़ीज़ विच में मुलाक़ात थी। मुलाक़ात दौरान जिदा जो गवर्नर ॿिया शाही ख़ानदान जा फर्द बि मौजूद हुआ। घर वज़ीर पाक सऊदी लाॻापनि खे वधीक मज़बूत बणाइण वारो अज़म वॼायो। हज जा बहितरीन इंतज़ाम करण ते थोरा बि मञा।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: Mehran ki sakafat se gunda hua. आवाज की डोर से बंधा हुआ
4: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
5: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
4: सुनते रहो GFM 90.4

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: पे मातली बदीन
1: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलाण लाए
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
1: 03125252786
0: जी हाँ बुड़ी 331 25 7 86
1: GFM रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

हमारी मॉर्निंग बहुत ही हॉट वेदर चल रहा है यार, तो बहुत ही गर्मा गर्म सी शाम आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो और जुम्मा भी बहुत मुबारक हो। कैसे हाल चाल है दोस्तों? ठीक ठाक है, मजे में है, जबरदस्त हैं और यकीनी तौर पर जहां कहीं पर भी होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने काम अपने हाथों से अंजाम दे रहे होंगे। और इस गर्मा गर्म से वेदर, जबकि आज 41 सेंटीग्रेड है, इस टेम्परेचर को एंजॉय कर रहे होंगे। चेहरों पर मुस्कुराहट आपके बिल्कुल गायब नहीं हुई होगी, क्योंकि हालात चाहे कैसे ही क्यों ना हो, हम सब जो पाकिस्तानी लोग हैं जनाब, हर हाल में जीने का हुनर जानते हैं। तो जनाब अपने

0: जी जना वेलकम बैक, कहानी सुनो, हमारी जबानी सुनो, हमें प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, क्या बात है, बहुत प्यारा सा, बहुत आला सा गाना हमने आपके समातों की नजर किया। हुण पै गई है कलेजे विच ठंड, बिल्कुल जनाब, आई एम डैम श्योर के आपके कलेजों में ठंड पड़ गई होगी और यकीनी तौर पर बहुत अच्छा भी लग रहा होगा आपको हमारे साथ रहकर। और जब आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमें कॉल करें 03000113488 पर। लेते हैं शो की पहली कॉल। ओए होए, अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप नहीं हुई, हो गई, आए, आए, मर गए। खैर जनाब, कोई बात नहीं है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और जनाब हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ चले गए? हेलो, अस्सलाम वालेकुम,
1: वालेकुम सलाम,
0: अदा केर असा सा घर मुखे लगे तो असा जो पुरानो कॉलर आहे मिराणी साहब,
1: हां जो पुरानो 21612 घोटी बाबा बिना साल खंड तो नाराज हो,
0: अल्लाह अकबर, मुखा वरी केडी नाराजगी बाबा, मुखा तो कोई नाराज ही नथी दो, आ तहां
1: की थी नाराजगी, देखो नाराजगी तू ने समझी ना।
0: हेलो बाबा, मुसा जेका मुजी नाराजगी है हुआ मुसा गलायो, बाकी बेन जी नाराजगी सा बेन सा गलायो, ठीक है। तहां जो नालो चाहे मा विसरी बिया मदा,
1: मां दा पड़ोसीया
0: अबोड़े
1: अलीगुल
0: मिराणी साहब, शायर साहब, बिल्कुल जनाब, बाई गैस। और क्या हाल चाल है आपके, केड़ा हाल चाल है?

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: DAFM 88. उसी खत्ते की बनी है आवाज़ DAFM 88.
1: और हमारे साथ रह सकते हैं. वेल गाइस, हमने बात की स्टार्टिंग में कि जनाब जितने भी लोग घूमने जा रहे हैं, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो प्लीज अपना थोड़ा सा ख्याल रखें और वहां पर ऐसी जगहों पे मत जाइए जहां पर लैंडस्लाइडिंग होती है. वहां पर ऐसी जगहों पे मत जाइए जहां पर पानी का बहाव तेज है. वहां पर जो है तमाम चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि आप अपने इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. पाकिस्तान में रहकर हम अपने अपने इलाकों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और आउट ऑफ कंट्री जाके हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. ये बात याद रखिएगा. तो जनाब जब हम यहां से जाते हैं और शुमाली इलाकों में, नॉर्दर्न इलाकों में, तो वहां पर जनाब सब हमें हमारे इलाके के नाम से जानते हैं कि ये फलां इलाके से आया है, फलां शहर से आया है. तो जनाब हमें थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना चाहिए और वहां पे बहुत अच्छे तरीके से वेल मैनर्ड होकर बिहेव करना चाहिए. और जनाब अपनी जान सबसे ज्यादा कीमती है, अपनी जानों की हिफाजत कीजिए और जनाब अपनी जिंदगी की हिफाजत कीजिए. आपका अपना अशफाक नियाज़ी है आपके साथ. गर्मा गर्मी जो है जैसे ही शाम ढलेगी तो थोड़ी बहुत कम होना शुरू हो जाएगी और उस वक्त जनाब बहुत से लोग बाहर निकल आएंगे, क्योंकि फिलहाल गर्मा गर्मी की शिद्दत अभी बरकरार है और टेम्परेचर अभी नॉर्मल नहीं हुआ. तो जैसे जैसे रात हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला थोड़ी सी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी और बहुत अच्छा सा मौसम हो जाएगा. और प्रेडिक्शन के मुताबिक जनाब कुछ ही दिनों में सक्कर में बारिशें शुरू होने वाली हैं. तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें चारों मौसम दिए, सर्दी गर्मी के जाबाज, जिन्हें हम रच के एंजॉय करते हैं. और साथ साथ थोड़ी शिकायतें भी कर रहे होते हैं कि ज्यादा सर्दी आ गई, ज्यादा गर्मी आ गई, लेकिन कोई बात नहीं, चलती है जिंदगी. ये लेते शुक्रिया एक और कॉल. अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम
1: जी. अदा केर असा सबनी सा गद
2: मरपुर का एक हम लोग जरवार जी का नाम
1: मोहम्मद अली जरवार. वाह वाह, मोहम्मद अली जरवार साहब केड़ा हाल चाल है? मोहम्मद अजीज. अच्छा अजीज भाई, केड़ा हाल चाल है? मजे में, मजे में आए हो? अच्छा मुझे आवाज ना लेना थी. अच्छा तो कोई गाल नहीं है जनाब, चाहूं था तो तमा यो बुधायो तो मां हने जने जुनेजो अलाडीनो जुनेजो जो गानो प्ले कंदम कहंदे नला था करना चाहो.

0: आप सुन रहे हैं GFM सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

म्यूजिक बड़ा है हूँ भाषा मैं तो रात बने हूँ भाषा नचा नचा दिल दार का तेरी समा पंच मयार ऐसी वैसी न तू बात कर मुझे से ना कोई मुलाकात कर तू अटगा तू अटगा तू अटक टक टक

0: दरिया सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 0331252576।
1: जी हा, 2315
0: रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 4।

0: रखे हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: संपर्क पर KTN न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं
2: DAFM
1: 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: Thanks for watching this video. For more updates, subscribe Shehla Gul Official.
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ जीए एफएम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफएम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 0331252576।
1: जी हा, 2315525786।
0: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: It's 9:15 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
4: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: Thanks for watching this video. For more updates, subscribe Shehla Gul Official.
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज़ भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।
1: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।